गुरु रूप सतसंगत जीओ, आप जी ने गुरु की गोद विच बैठ के कीर्तन का आनंद माणिया। सतगुरु पातशाह सभना नू घरों घरों सिखी सिदक भरोसा बख्शिश कर, नामदान दियां दातां बख्शिश कर। कीर्तन की टाइम की समाप्ति है जीओ। आओ आनंद साहब जी का जाप सारे ने श्रवण करना, उपरंत अरदास शामिल होवांगे जी।

कोट इशनानंग जादक दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्ची पत अंत फसे जम फास परेंगे। जे नर श्री पत के प्रस है पग ते नर फेर न देह

को हरता दुष्ट दुखियों को चय करता श्री अस्तो जो भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ उत्काला मन बांछत पड़ पावे सोई दुखनत से व्यापत कोई अड़ेलो सुनाए गोंग जो जाहे सो रसना पावई सुनाए मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रहै हो जो जाकी एक बार चाओ पई को कह चाओ पई संबत 17 सहस्पुण चाय अर्ध सहस्पुण 3 कही जाए भाद्रव सुधी अष्टमी रव बाराओ तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधाराओ।

सवैया। पाए गए जब तित मरे तब ते को अंकरे नहीं अन्य राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह माते एक न माने हो सिमरत शास्त्र भेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने हो श्री अस्पान कृपा तुम्हारी कारू मैं न कहो सब तोहे बखाने हो।

न पाया जाए किसै मिटू रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुरु जी मिलाए तिसनु सुर सौंपी है विचों हुआ बुझाए जिस जा जियो तिस मिल रहे हर वसै मनयाए।

पैर हलायन पैर न से उड़ उड़ रावा चाटा पाए वेख लोग हसे घर जाए रोटियां कारण पूरे ता आप शरण करती ना।

अर्जा पूजा गर्भास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करता सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन संतोख बजे देने कै विचार दे दे मंगे सह

नानक जनते उपाय कै समाले सबना जन करता करना किया चिंता भे करनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जवारी स्वस्थ तिस तिस।

0: तेरे कर आनंद वधाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत

गए मसकत कहा नानक ते मुख उजले के ती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

0: नौ खंड पृथ्वी फिरे जर जीव अगन मै होत प्राण न्योली कर्म करे बो आसन निमक निमक कर सी कटावे हर के नाम सांसर कुछ ना है मन कामना ती दे छूटे
1: भगवान न मन ते उठे
0: सोच करे दिन सर रात
1: मन की मैल न तंते जात
0: देही को वो साधना करे
1: मन ते कबू न बिकिया करे
0: जल तो हुए वो दे नीत
1: सुध कहावे काची बीत
0: मन हर के नाम की महिमा ऊच
1: नानक नाम तेरे पति तो मूच
0: बहुत सियाण जानका पौ व्यापे
1: अनेक जतन कर कृष्णा त्रापे
0: पेख नेक अग्नि बुझे
1: कोटो भाव तके नहीं सीजे
0: दूस नाही ओ प्यालो
1: व्यापे माया जाल
0: अवर कर तू सगली जमडाने
1: गोविंद भजन दिल नहीं माने
0: हर का नाम जाद हो जाए
1: नानक।

0: तुझे प्यारे दूध पया उपर सक सैन यो नैगुण गुण कसूना बूझे प्रसाद तारो पर सुख बसा प्रसाद पीवे शीतल जला
1: पवन पावक
0: प्रसाद भोगे सब रसा
1: समग्री
0: इने हाथ पाप कर्ण नेत्र रसना ऐसे दोख मूढ़ अंध व्यापे।

0: प्रजापति
1: ये प्रसाद शक्ति अमृत खाहे ये प्रसाद सगंध तन लावा
0: किसको सिमरत परम गत पावे
1: ये प्रसाद बसे सुख मंदर
0: इसे क्या है सदा मन अंदर
1: ये प्रसाद ग्रह सुख बसना
0: आठ पैर सिमरो तिस रसना
1: ये प्रसाद रंग रस भोग
0: नानक सदा के आइए ज्ञान जोग
1: ये प्रसाद पाठ प्रणम हंडावा
0: इसे क्या कथे अमर बढ़ावे
1: ये प्रसाद सुख सोए सुई जय
0: आठ पैर का जस का विजय
1: ये प्रसाद तुझ सब को माने
0: मुक्ता को जस रसन बखाने
1: ये प्रसाद तेरो रहता धर्म
0: सदा के आइए केवल पार ब्रह्म
1: राव जी जात दर कै मन पावा
0: नानक पाछे की कर जावे
1: ये प्रसाद रोग कंटन देही
0: जीव लावो किस राम स्नेही
1: ये प्रसाद तेरा औला रहे तो
0: मन सुख पावे हर हर जस के
1: ये प्रसाद तेरे सगल सिंध टाके
0: मन शरणी पर ठाकुर प्रताके
1: ये प्रसाद तुझको ना पहुंचे
0: मन साथ साथ सिमरो प्रभु ऊचे
1: ये प्रसाद पाई दलब दे
0: नानक ताकी भगत करे
1: ये प्रसाद आओ कुन करी जय
0: मन से सिमरत को आलस की जय
1: ये प्रसाद आसव हस सवारी
0: मन तिस प्रभु को कबू ना विसारी
1: ये प्रसाद बाग मिलख तना
0: राग पुरे प्रभु अपने मना
1: जब तेरी मन बंत बनाई
0: उठत बैठ सत से आई
1: जे ते आए जो एक अलख है
0: यहाँ वहाँ नानक तेरी रखे
1: ये प्रसाद करे पुण्य बहुत दान
0: मन आठ पैर कर तिसका ध्यान
1: ये प्रसाद तू चार विहारी
0: तिस प्रभु को सास सास चितारी
1: ये प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: सुप्रभु सिमरो सदा अनूप
1: ये प्रसाद तेरी निकी जात
0: सुप्रभु सिमर सदा दिन रात
1: ये प्रसाद तेरी पत्र है
0: गुरु प्रसाद नानक जस का है
1: ये प्रसाद सुने कर नाद
0: जे प्रसाद देखे बिस्माद
1: ये प्रसाद बोले अमृत रसना
0: जे प्रसाद सुन सहजे बसना
1: ये प्रसाद हास कर चला
0: जय प्रसाद संपूर्ण फल
1: जय प्रसाद परम गत पावे
0: जय प्रसाद सब सह समावे
1: ऐसा प्रभु त्याग और कत लागो
0: गुरु प्रसाद नानक मन जागो
1: जय प्रसाद तू पर संसार
0: इस प्रभु को मूल मन विसार
1: जय प्रसाद तेरा प्रताप।

0: साध के संग में कुजल हो तो
1: साध
0: के संग मिटे मान साध के संग भूजे ब्रह्म नेरा
1: साध
0: के संग पाए नाम रतन
1: साध के संग
0: साध के महिमा बरने कौन पुरानी
1: साध की शोभा ब्रह्मा
0: साध के संग गोचर मिले
1: साध के संग सदा पर भूले
0: साध के संग आवे बस पंचा साध संग होए सब की रेन
1: साध के संग मनोहर
0: साध के संग ना कतु तावे
1: साध संग स्थित मन पावे
0: साध के संग माया ते पहनो
1: साध संग नानक प्रभु सो परसन
0: साध संग दोसम साध मीत
1: साध के संग महापुनीत
0: साध संग के सिर नहीं वैरो
1: साध के संग ना बीरा पैर
0: साध के संग ना ही को मंदा
1: साध संग जाने परमानंदा
0: साध के संग ना ही हो ताप
1: साध के संग सजे सब आप
0: आपे जाने साध बढ़ाई
1: नानक साध प्रभु बने आई
0: साध के संग ना कबूत आवे
1: साध के संग सदा सुख पावे
0: साध संग वास्तव गोचर रहे
1: साधु के संग अगर सहे
0: साध के संग बसे धन उच्चे
1: साध के संग महल पहुंचे
0: साध के संग दृढ़ सब धर्म
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म
0: साध के संग पाए नाम निदान
1: नानक साधु के कृपान
0: साध के संग सब कल उदारा
1: साध संग साजन मीत कुटुंब नस्तारे
0: साधु के संग सो तन पावे
1: जिस तन ते सब को बरसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा
1: साध के संग शोभा सुखेवा
0: साधु के संग पाप पलैन
1: साध संग अमृत गुण गायन
0: साध के संग सर्व धन गम
1: नानक साध के संग सफल जनम
0: साध के संग नहीं कुछ काल
1: दर्शन भेटत होत निहाल
0: साध के संग क्रूखत हरे
1: साध के संग नरक पर हरे
0: साध के संग इया उहां से ला
1: साध संग बिशरत हर मेला
0: कोई शह सोई फल पावे
1: साध के संग ना बिठा जावे
0: आप रहन साध रह बसे
1: नानक उदरे साध सुन बसे
0: साध के संग सुनो हर नाओ
1: साध संग हर के गुण गाओ
0: साध के संग न मन ते बिसरे
1: साध संग सर पर निसरे
0: साध के संग लगे प्रभु डीठा
1: साधु के संग कट कट डीठा
0: साध संग वाए आज्ञाकारी
1: साध संगत पई हमारी
0: साध के संग मिटे सब रोग
1: नानक साध मिटे संजोग
0: साध की महिमा वेद ना जाने
1: जेता सुने तेता बखियान
0: साध की उमा तय गुण ते दूर
1: साध की उमा रही भरपूर
0: साध की शोभा का ना ही अंत
1: साध की शोभा सदा बेअंत
0: साध की शोभा उच्च ते उच्च

0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मल
1: जैसे मैल लागे जला।
0: ब्रह्म ज्ञानी का मन होए प्रकाश
1: जैसे तरियो पर आकाश।
0: ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सतर समान
1: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अवान।
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा
1: मन अपने है सब ते नीचा।
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पए
1: नानक जिन प्रभाव करे।
0: ब्रह्म ज्ञानी सल खीरीना
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी जीना।
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब रोमया
1: ब्रह्म ज्ञानी के कुछ प्राणा पया।
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि वर्षी।
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जोगता।
0: ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान।
0: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आ

0: सदानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए चिंता
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दस बट भागी पाई
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर।

0: ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए आखर
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर
0: ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी की कथा ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सास का करता
1: ब्रह्म ज्ञानी सजीवे नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मौत ज्योत जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष दाता।

0: मिथ्या नाही रसना परसो
1: मन में प्रीत निरंजन दरस
0: तय रूप न देखे नेत्र
1: संग संगेत
0: करना सुने काहू की निंदा
1: जाने आपस को मंदा
0: और प्रसाद विख्या पर हरे
1: मन की वासना मन ते डरे
0: इंद्री जित पंच दोख ते रहे तो
1: नानक कोट मत देखो ऐसा परस
0: वैष्णो सोचे सुपर सो प्रसन्न
1: विषम की माया ते हो तीन
0: कर्म करत होवे न कर्म
1: तिस वैष्णो का निर्मल धर्म
0: बाहु फल की शनि वशे
1: केवल भगत कीर्तन संग राजे
0: मंत्र अंतर सिमर गोपाल
1: सब ऊपर होवत कृपाल
0: आदरे अवरा नाम जपावे
1: नानक को वैष्णो परम गत पावे
0: भगवती भगवंत भक्त कारंग
2: त्यागे दुष्ट का संग
0: ते बिन से सगला परम
2: कर बुझे सगल पाप
0: संग पापा मल खोवे
2: तिस भगवती की मत उत्तम होवे
0: की टहल करे नित नीत
2: मंदर हरते बिशन प्रीत
0: हर के चन हर देव सावे
2: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
0: ओ मंड जो मन प्रबोध
1: राम नाम आत्म में सोवे
0: राम नाम सार रस पीवे
2: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
0: हर की कथा हर देव सावे
2: सो पंडित फिर जो न आवे
0: वेद प्राण सिमरत बूझे मूल
2: सुख मैं जाने अस्तूल
0: वर्णा को देव देश
2: नानक पंडित को सदा देश
0: मंत्र सर्व को ज्ञान
2: वर्णा में जपे को नाम
0: जो जो जपे तिस की गत होए
2: सत्संग पावे जन कोए
0: पर कृपा अंतर तारे
1: प्रस प्रेम गत पात्र को तारे
0: सर्व रोग का औखर नाम
1: कल्याण रूप मंगल गुण काम
0: गाँव गत कितने पगे धर्म
1: नानक तिस मिले जिस लिखिया दूर करम
0: जिसके मन पा राम का निवास
1: जिसका नाम सत राम दास
0: आतम रात नदरी आया
1: दास संतन पाए तिन पाया
0: सदा नेट नेट हर जान
1: सो दास दरगह परवान
0: अपने दास को आप कृपा करे
1: तिस दास को सब सोची परे
0: संग आत्म दास
1: ऐसी जुगत नानक राम दास
0: की आज्ञा आत्म तावे
2: जीवन मुक्त सो कहावे
0: जैसा हरक तैसा सोग
2: सदा अनंत नहीं बियोग
0: ऐसा स्वर्ण तैसी असमाटी

0: करी
1: संत के दुखन हर जा कटे
0: संत के दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए
1: संत के दुखन मत होए मलीन
0: संत के दुखन सोबाते हीन
1: संत के हत्ते को रखे न कोए
0: संत के दुखन दान भ्रष्ट होए
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग निंदक भी करे
1: संतन के दुखन काग ज्यों लवे
0: संतन संत के दुखन ते मुख पवे संतन के दुखन काग ज्यों लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए
1: संतन के दुखन दिशा में जले
0: संत के दुखन सबो चले
1: संतन के संत के दुखन ते सब जाए
0: संत के दुखन नीच न जाए
1: संत दुखी का थाओ को नाहे
0: नानक संत पावे ताओ बिगत पाए
1: संत का निंदक मात आई
0: संत का निंदक टिकन न पाए
1: संत का निंदक मात यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज तेहीन
0: संत का निंदक दुखिया
1: संत के निंदक को सब रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत की निंदा दुख में दुख
0: नानक संत पावे ता उसका ही होए मोख
1: संत का दुखी सदा वेत
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लागे
0: संत के दुखी को सब त्यागे।

0: कस हुकम भू सुख होए
1: इसका नाम रख कंठ परोए
0: सिमर सिमर सिमर पाप सोए
1: नानक बिगन न लागे कोए
0: औस्तद मन में कर निरंकार
1: कर्म मेरे सत्यहार
0: निर्मर रसना वर्त पियो
1: सदा सेला कर मैं जियो
0: नैनो पेट हार करंग
1: सत्संग बिन से सब संग
0: चलो मार गोविंद
1: मिटे पाप जपिए हर बिंद
0: हर हर कर्म सर्वन हक कथा
1: हर दरगे नानक पूजन मथा
0: पट भागी ते जन जग माहे
1: सदा सदा हर के गुण गाए
0: राम नाम जो करे विचार
1: से तनवंत गनी संसार
0: मन तन मुख बोले हर मुखी
1: सदा सदा जानो ते सुखी
0: तो एक एक पछाने
1: जी जाने
0: नाम संग जिसका मन मान्या
1: नानक तिने निरंजन जान्या
0: गुर प्रसाद आपन आप सुझे
1: इसकी जानो कृष्णा बुझे
0: आ संग हरा जस कहे तो
1: सर रोग त्यो हर जन रहत
0: अंदर कीर्तन के रुखान
1: कृष्ण मैं सोई निर्वाण
0: एक उपर जय जन की आसा
1: इसकी कटिए जम की भाषा
0: राम की जस मन भूख
1: नानक किसे न लागे दुख
0: जिसको हा ब्रह्मन जतावे
1: सो संत सेला नहीं डरावे
0: प्रभु अपना कृपा करे
1: सो से अकतो किसते डरे
0: जैसा सा तैसा दस्ताया
1: अपने कार्य में आप समाया
0: सोत सोत सोत सीजिया
1: गुरु प्रसाद तत् सब बुझिया
0: जब देखो तब सब कुछ मूल
1: नानक सो सुखम सोई अस्तूल
0: नै को जन्मे नै को मरे
1: अपने किस जन्मे नै किस मरे आपन चलिरा भी करे आवन जान
0: आवन जान देष्ट अन देष्टो
1: आज्ञाकारी दारी सब श्रेष्ठ
0: आपे आ सगल में आप
1: अनेक रूप रस खाते हो खाप
0: नाची नाही कुछ खंडो
1: तारन तार हो ब्रह्मंड
0: अलग पे पुरख प्रताप
1: आप जपाए ता नानक जाप
0: जिन प्रभ जाता सो शोभा वंत
1: सगल संसार सारे ते दिन मंत
0: प्रभ के सेवक दुख सगल धारण
1: प्रभ के सेवक दुख बिसारण प्रभ के सेवक दुख बिसारण
0: आपे मेल ले कृपाल
1: गुरु का सब जप निहाल
0: की सेवा सोई लागे
1: जिसनु कृपा करे बढ़ावे
0: नाम जात पावे विश्राम
1: नानक तिन पुरख को उत्तम करमान
0: जो कुछ कहे सो प्रभ के रंग
1: सदा सदा बसे हर संग
0: सुवाए होवे सो होए
1: करने हार पछाने सोए
0: प्रभ का किया जन मीठ लगाना
1: जैसा सा तैसा दृष्टाना
0: जैते हो जात समय समाए
1: होए सुख नानु

0: की चिंता जिस मन माहे
1: इसते वीरता को नाए
0: रे मन मेरे हर हर जाप
1: अपना सी प्रभ आपे आप
0: पर किया कछु ना होए
1: जे सो प्राणी लोचे कोए
0: नाही तेरे कछ काम
1: गत नानक जपे कर नाम
0: रूप बंद होए नाही मोहे
1: रब की जो सगल कट सोए
0: तनवंता होए क्या को गर्व
1: जा सब किस तिस का दिया गर्व
0: अत सूरज को कहावे
1: रब की कला बिना कहतावे
0: को होए वह दातार
1: इस दिन हार जाने का वार जिस गुर प्रसाद टूटे होए रोग नानक सो जन सदा रोग जो मंदर को थामे समन त्यों गुर का शब्द मने अस्तमन
2: बखान नाव चढ़तरे
1: प्राणी गुर चरण लगत निस्तरे
2: जो अंधकार दीपक प्रकाश
1: गुर दर्शन देख मन होए विकास
2: ध्यान में मार्ग पावे
1: त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे
2: संतन की बाशो तूर
1: नानक की हलो चापूर
2: मूर्ख काहे बिल्लाये
1: पूरब लिखे का लिखिया पाये
2: भूख सुख प्रभ देवन हार
1: अवर त्याकूति से चितार
2: जो कुछ करे सोई प्रभ सुखमान
1: भूला काहे पे जान
2: मन बस्त आई तेरे संग
1: लपट रे और असलो भी पतंग
2: नाम जप हृदय माहे
1: नानक पथ से भी कर जाए
2: इस वखर को लैन तू आया
1: राम नाम संतन कर पाया
2: जवान लिहो मन मोल
1: राम नाम हृदय में तोल
2: बाद खेप संत संग चाल
1: अवर त्याग विख्या जंजाल
2: तन तन कहे सब कोई
1: मुखो जल हर दर गए सोए
2: ये व्यापार बिरला व्यापार
1: नानक ताके सद बलिहारे
2: करन सार के तोय तोय पियो
1: अरब साथ को अपना जियो
2: साथ की दूर करो स्नान
1: साथ ऊपर जाए कुर्बान
2: साथ सेवा बड़ पाकी पाइये
1: सा संग हर कीर्तन गाये
2: मन का बिगंते साधु रखे
1: हर गुण गाए अमृत रस चाखे
2: बहुत गही संत दर आया
1: सर्व सुख

0: कम पछाने
1: किसकी महिमा कौन बखानो
0: इसका गुण कहे एक ना जानो
1: आठ पहर प्रभ बसे हजूरे
0: कहो नानक से ये जन पूरे
1: मन मेरे तिन की ओट ले
0: मन तन अपना तीन जन दे
1: जन अपना प्रभु पछाता
0: सो जन सरब धोखा दाता
1: इसकी शरण सरब सुख पावे
0: इसके दर सब पाप मिटावे
1: सियानो सगली छाड़